0: इस ट्रैक के जो एक कहते हैं ना यूएसपी है वो है वॉइसेस का जो कॉम्बिनेशन है ना, जैस्मीन और सतेंद्र के अलग अलग ट्रांजिशन के साथ एक खूबसूरत इमोशनल कैनवास क्रिएट होता है। दोनों के वोकल ट्रांजिशन मैजिकल है, जहाँ एक गाना दूसरे एहसास के साथ बहुत ही स्मूथली ग्लाइंड होता है। फिलहाल अभी सुनेंगे प्रोग्राम बॉलीवुड ट्विस्ट में प्रोग्राम बीबीसी स्टम्प्ड को। सो गाइस स्टे ट्यून्ड।
1: From the BBC World Service, in association with ABC and Akashvani, this is Stumped.
2: Hello and welcome to Stumped, your intercontinental hit of news, features and debate from the quirky world of...

0: हमारी संस्कृति हमारी परंपराओं में हमेशा पूरी दुनिया को एक साथ लाने की बात कही गई है और स्पोर्ट्स यानी खेल शायद उसका सबसे बेहतरीन जरिया है।
1: एक गेंद हवा में उठती है, एक दौड़ शुरू होती है और शुरू होती है खिलाड़ियों की जद्दोजहद। दर्शकों की नजरें गेंद पर टिकती हैं, सांसें थम जाती हैं और फिर एक पल आता है जाने कितनी धड़कनें एक लय पकड़ लेती हैं और जीत की खुशी में जाने कितने चेहरे एक साथ खिल उठते हैं। शायद खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। दुनिया में कितनी ही दूरियां हैं, कितने मतभेद हैं, कितनी दीवारें हैं, लेकिन खेल एक ऐसा जरिया है जो सबको एक साथ एक मंच पर ला खड़ा करता है। और एशियन गेम्स की तो शुरुआत ही इसी सोच के साथ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के उथल पुथल से जूझ रही इस दुनिया के तमाम देश जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ आए तो खेलों की सबको एकजुट करने की ताकत को गुरुदत्त सोढ़ी ने महसूस किया और सपना देखा एशिया के सभी देशों को ठीक इसी तरह एक मंच पर लाने का। इसी विजन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत ने पहल करी और 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ।
0: आज 75 वर्षों बाद भी ये मंच एशिया को यानी दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है
1: और इसका एहसास आज जापान के पालोमा मिजुहू स्टेडियम में हुआ जब एक भव्य उद्घाटन समारोह में 45 अलग अलग देशों के एथलीट्स एक साथ आए। सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
0: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जिसमें संगीत की एक अमिट छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्टबीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था जहाँ एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास्ट किया।
1: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में दो ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उपकप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
0: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के तीन कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
2: To each and every one of you, the entire continent is behind you. Give everything you have, hold nothing back. The impact of what you achieve here will stretch far beyond any medals or performances. Throughout our continent, across all nations, big and small, from urban cities to rural villages, millions of young people are watching. They may not yet know what they're capable of, but they're watching you, they're learning from you, they are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible, what can be achieved when you push the limits of human potential.

0: and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
1: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होनेहोन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
2: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली। रेफरी, अंपायर्स और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली। एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टेकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
1: सबसे पहले बात टेकबॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेकबॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेकबॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेकबॉल की शुरुआत हंगरी में हुई। इसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांघ, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेकबॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेकबॉल दल में क्विम्सी डिसूजा, मोहम्मद अनस इमरान बेग और डेक्लॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेक्लॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विम्सी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वर्ल्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की कोएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की इमा सुमाया से हुआ। क्विम्सी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से अपने नाम किया। इस तरह क्विम्सी फाइनल से चूक गई, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
2: दूसरी तरफ शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा थी, मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चरनी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57 रन पर

0: समेट दिया। शैफ अली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता। लेकिन कमाल की बात ये रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला, उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई, तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दे कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ टेकबॉल में भी कल 2 पदक आने की पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी, जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7:00 बजे एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की, जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिनटैंग नगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है, बल्कि एलए 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है, और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
1: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज द होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर एक ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटेलिटी, अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टैमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा, जापान और साउथ कोरिया, इवन पाकिस्तान, इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें, ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट ऑल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, नो डाउट अबाउट। मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
0: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे, सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है, महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर वुमेन्स टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है, तो वहीं

0: उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरन साथियान, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्ता मुखर्जी टीम का हिस्सा है। फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल वलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
1: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है, ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशु से लेकर MMA तक की। एक तरफ वुशु में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी हैं। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशु की। वुशु के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे, इन्हीं में वुशु भी शामिल हैं, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशु के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के चांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशु की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशु अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के 2 खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंध सिकाई चेतन से होगा।
0: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे, वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पण टिकिया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking calls from you on matters related with business and market. But do remember that we do not address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें श्रोताओं चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ विश्लेषक शरद कोहली शरद जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
0: अ वार्म वेलकम शरद
2: धन्यवाद प्राची धन्यवाद राजेश सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा अभिवादन
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर आइए उससे पहले सुने सुर्खियां
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर 6th कंसेक्यूटिव वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंट्रीज यूथ And U.S. stock market indices wrap up week on mixed note.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते देश के युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोल रहे हैं और अमेरिका के शेयर बाजार इस सप्ताह मिश्रित रुझान के साथ बंद हुए
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं कि सप्ताह के अंदर अंदर किस तरीके से हमारे शेयर सूचकांकों ने व्यवहार किया मार्केट का हाल कैसा था तो प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई भू राजनीतिक तनाव विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली और लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों के माहौल को लेकर चिंताओं ने निवेशकों को सतर्क रखा इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 487 अंक यानी लगभग 0.7% गिरकर 74,295 पर बंद हुआ वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52 अंक यानी 0.2% लुढ़ककर 23,346 पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में सप्ताह के दौरान लगभग 0.2% की गिरावट आई क्षेत्रीय स्तर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रेल्टी और आईटी क्षेत्र में गिरावट रही वहीं एफएमसीजी हेल्थ केयर और मेटल में बढ़त दर्ज की गई अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह रुपया 33 पैसे कमजोर होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.88 रुपए पर बंद हुआ और इसी बीच वेस्ट बंगाल से हमारे साथ बबलू जुड़ रहे हैं बबलू जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछिए
3: भारत में
1: बबलू जी आपकी तरफ से थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है आप प्लीज अच्छे नेटवर्क क्षेत्र में आकर के हमसे बात करिए
3: क्या मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको
1: जी जी जी
3: जी हमारा मेरा सवाल ये है मैडम भारत में रियल्टी सेक्टर जो भी बहुत डाउन चल रहा है उसका क्या फ्यूचर है आगे में क्या रियल्टी सेक्टर आगे और अच्छा करेगी या फिर वो बुरा हाल हो जाएगा रियल्टी सेक्टर का इंडिया में
2: बबलू देखिए रियल एस्टेट सेक्टर का आप पूछ रहे हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर पूरे देश में बबलू यूनिफॉर्मली बिहेव नहीं करता है हम पूरे देश को कहें कि वो एक साथ आप जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हैं हो सकता है आप जहां रहते हो उस क्षेत्र में एक सैचुरेशन पॉइंट आया हो जिसकी वजह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो लैंड है अभी भी प्राची और राजेश को भी बताना चाहूँगा जो लैंड है जहाँ पर खासकर टाउन प्लानिंग हो रही है जहाँ पर शहर एक्सपैंड करता है वहाँ पर अभी भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए वो साबित हो रहा है कहीं कहीं जो अपार्टमेंट्स हैं जहाँ

0: सप्लाई ज़्यादा है बबलू जी, वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक स्टैग्नेंसी आ गई है। तो ये इसको हम यूनिवर्सली पूरे, क्योंकि आकाशवाणी तो पूरे देश में जाता है, तो मुझे लगता है मैं कुछ ऐसी बात बोलूं जो कि पूरे देश के लिए लागू हो तो वो बेहतर रहेगा। तो इसको हम यूनिवर्सली पूरे देश के लिए एक जैसा नहीं कह सकते। ऐसी मैं उदाहरण के तौर पर आपको बबलू बताऊं कि जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, जो बहुत महंगे वाले घर होते हैं, उनमें कहीं रिसेशन नहीं है। बाकी ये आपको मैं इसका सिद्धांत बता देता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर कोविड के बाद से काफ़ी बूम किया और उसके बाद इसमें एक प्लैटो फेस आता है। ये इसकी साइकिल है, धीरे ऊपर जाता है, फिर इसमें प्लैटो फेस आता है, फिर उसके बाद थोड़ी करेक्शन होती है। तो इसको हम साइक्लिकल बोलते हैं। ये मतलब एक पूरा का पूरा साइकिल है, पहले ऊपर जाएगा फिर फ्लैट होगा। तो कुछ हो सकता है कुछ समय के लिए आपके जिस इलाके में आप हैं वहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप निवेश की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो वैसे तो निवेश अपने आपके जो सलाहकार है उनसे करना चाहिए, पर आप किसी दूसरी स्टेट में जहाँ पर शहर चल रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं। शहर चलता है, आपको शायद जानकारी होगी, शहर भी चलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोग जाते हैं, अरे यहाँ तो मॉल बन गया, यहाँ तो मार्केट बन गई, तो पहले था नहीं। तो मुझे लगता है उसको उस दृष्टि से आप इसको देखें और किसी दूसरे अन्य जगह पर आप ट्राई करें, मे बी आपका नज़रिया बदलेगा। बाकी ओवरऑल आपके इलाके में आपकी बात सुन के लग रहा है ऐसे ही कि पर कुछ समय लगता है फिर उसको रिकवर करने।
1: जॉइनिंग अस फ्रॉम न्यू दिल्ली इज अमित झा। वार्म वेलकम अमित। Hello, Amit, can you hear us? I think we've lost touch with him.
2: Hello.
1: Yash, yeah, Amit.
2: सर आवाज आ रही है आपको?
1: बिल्कुल आ रही है, आप सवाल पूछे अपना।
2: हाँ सवाल लीजिए। सर सर नमस्कार सर।
0: हाँ नमस्कार अमित।
2: सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मान लीजिए एनएससी या बीएससी का, नेक्स्ट में रोल ओवर हो रहा है, रोल ओवर सर आप जानते होंगे डेरिवेटिव का।
0: हाँ जी।
2: तो रोल ओवर अगर ज्यादा हो रहा है तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? और दूसरा सर, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या संकेत बताते हैं सर? धन्यवाद सर।
0: ओके, चलिए पहले आपने रोल ओवर का पूछा अमित, ये डेरिवेटिव्स में होता है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसको जब जो एक्सपायरी डेट होती है उससे हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ज़्यादातर अमित देखा गया है, अगर मैं अपने तजुर्बे से बात करूं, तो रोल ओवर जब होता है, जब जिस तरफ आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट डेट पर आपको उसके अनुकूल आपको नहीं लग रही है मार्केट, तो फिर आप उसको रोल ओवर करना चाहते हैं। वरना क्या होता है, आपको फिर लॉस बुक करके बाहर आना पड़ता है। तो रोल ओवर यही बताता है। या फिर एक और केस में रोल ओवर होता है जहां पर जो ट्रेडर्स होते हैं बहुत बुलिश या बहुत बेरिश होते हैं, उनको लगता है कि अभी तो पूरा मुनाफा नहीं आया, अगले एक्सपायरी डेट पे और ज़्यादा मुनाफा आएगा, ये भी कारण होता है रोल ओवर का। दूसरा आपने ओपन इंटरेस्ट पूछा, ओआई इसको बोलते हैं। ओपन इंटरेस्ट बताता है कि किसी पर्टिकुलर कॉल पर, किसी पर्टिकुलर लेवल पर इस वक्त कितने ट्रेडर्स का ध्यान है, यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक पर्टिकुलर लेवल पर बिल्डअप हो रहे हैं। क्योंकि आप ओआई पूछ रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं अमित कि आप जानते हैं इसके बारे में कि कैसे जो ऑप्शन चेन होती है, अगर मैं ऑप्शन चेन के उदाहरण से लूं, तो चेन में एक लेवल पर अगर ज़्यादा ट्रेडर्स का वॉल्यूम बन रहा है उसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ओपन इंटरेस्ट हमें यह बताता है कि क्या इस लेवल पर बहुत सारे लोगों का इस समय ध्यान है, तो उसको फिर आप एक पैमाना मानकर आप अगला ट्रेड कर सकते हैं। बहुत टेक्निकल बात पूछी अमित ने, मुझे मेरे लिए थोड़ा सा रेवलेशन है कि अमित जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं, बहुत रेगुलर कॉलर है। पर थोड़ा अमित संभल के करा करिए, ये बहुत टेढ़ी खीर होती है और कभी कभी के अक्सर धोखा भी दे जाती है, तो लॉट ऑफ पीपल बर्न देयर फिंगर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ अमित कि आप इसको ख्याल रख के करेंगे, ध्यान से करेंगे, और ये भी उम्मीद रखता हूँ ओआई और रोल ओवर आपको दोनों समझ आ गया होगा।
3: नई दिल्ली से हमारे साथ सतपाल जुड़ रहे हैं। महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो
3: जी सतपाल जी, अपना सवाल पूछिए।
4: हाँ कोहली जी और मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
4: मैं कोहली जी की वीडियो भी देखता हूँ, गोल्ड वाली वीडियो डेली देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ
0: जी।
4: और मेरा क्वेश्चन ये सर, अभी जो लड़ाई चल रही है यूएस और ईरान की, इसके बीच में अभी गोल्ड का क्या सिचुएशन रहेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो अब कौन सा सेक्टर आगे बढ़ेगा आने वाले दो साल में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप? थैंक यू।
0: चलिए आपका पहला सवाल, यूएस ईरान की लड़ाई चल रही है तो गोल्ड में तो वैसे ही सतपाल जी बहुत हलचल चल रही है आजकल, ऊपर नीचे। पर अभी यूएस के फेड ने रेट्स बढ़ाए तो गोल्ड ने उसको अच्छा डाइजेस्ट किया, उसको पचाया, और गोल्ड अभी जो हमारी फ्राइडे को रात की जो सिचुएशन है उसमें कॉमेक्ट

0: में, न्यूयॉर्क में काफ़ी बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म आउटलुक तो सतपाल जी गोल्ड की अच्छी है, काफ़ी शाइन का पहले ही बहुत चमकता है गोल्ड तो, और मुझे लगता है चमकने वाला है, और आपने लॉन्ग टर्म नज़रिया रख के चलें, पर एक डिस्क्लेमर जो शुरू में राजेश ने पढ़ा था उसका ध्यान रखें। और दूसरा आपने पूछा कौन सा सेक्टर मिड कैप या लार्ज कैप में चलेगा, मार्केट्स के लिए यू नो मैं आई एम श्योर हम डिस्कस करते हैं इसको बाद में, मार्केट्स के लिए बहुत टफ टाइम आया है, मुझे तो कई दफ़ा ऐसा लगता है मार्केट्स को किसी की नज़र लग गई है क्या हुआ है, क्योंकि 2024 के बाद से वो बिल्कुल निफ्टी ने तो नेगेटिव रिटर्न दिया, अगर निफ्टी 50 की बात करूं तो। अभी सेक्टर के लिए मैं ये कहना चाहूँगा आप डिफेंस सेक्टर को देख सकते हैं, एनर्जी सेक्टर को देख सकते हैं सतपाल, पर थोड़ा सा मार्केट में संभल के चलने की इस समय ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट अभी अमेरिका में जो सिचुएशन है, मार्केट्स हो क्या रहा है, मैं एक मिनट आपकी इजाज़त से लेना चाहूँगा, मार्केट्स डोमेस्टिक फैक्टर्स को नहीं देख रही हैं, मार्केट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स को देख रही हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस हो गई अमेरिका में क्या, तो थोड़े से जो अंतर्राष्ट्रीय जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल सिचुएशन है सतपाल जी, बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है मार्केट में भी। बाकी आप डिफेंस और एनर्जी सेक्टर इस दो के आप नज़र रख सकते, क्योंकि आपने सेक्टर पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, बाकी मार्केट में बहुत फूक फूक के पग धरना जिसको कहते हैं वो इस समय सिचुएशन है जी।
1: नई दिल्ली से हमारे साथ संजीव जुड़ रहे हैं, संजीव जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ नमस्कार कोहली साहब, नमस्कार टीम मार्केट मंत्रा।
0: नमस्कार संजीव बताइए।
2: हाँ कोहली साहब आपके आने का बहुत इंतजार रहता है हमें।
0: माय प्लेजर सर, मुझे आपसे बात करने का इंतजार रहता है, बताइए।
2: थैंक यू कोहली साहब, एक सवाल है, 2007 में हमने एक पेमेंट लिंक्ड फ्लैट में इन्वेस्टमेंट किया था
0: जी,
2: ज्वाइंटली
0: जी।
2: अच्छा वो प्रोजेक्ट तो थोड़ा डिले हो गया, मगर उसका ओवर द ईयर कुछ 4-5 साल पहले हमें उन्होंने सो कॉल्ड पोजेशन दे दिया।
0: अच्छा
2: प्रोडक्शन देने के बाद उसकी इंडस्ट्री भी हो गई
0: जी
2: उस एरिया में कंसर्न
0: जी।
2: अब उसको अगर हमने बेचना है तो उसका व्हाट यू कॉल फ्रॉम डेट ऑफ प्रोडक्शन या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से वो कैपिटल गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गिना जाएगा, कैसे होता कैलकुलेशन?
0: देखिए संजीव जी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं कि पहले कुछ लोग रजिस्ट्री मानते थे, कुछ पोजेशन मानते थे, पर जनरली जहां बिल्डर की अलॉटमेंट होती है तो ज़्यादातर जो केसेस हैं कोर्ट्स में और ट्राइब्यूनल में वो जिस डेट को आपको अलॉटमेंट होता है उस डेट से आपका मालकियत मान लेते हैं। तो आपको जब संजीव जी इस पे जब लेटर मिला होगा अलॉटमेंट का तो आप उस डेट से मान के चलेंगे, तो आप मेरे ख्याल क्योंकि 2007 का है तो मुझे लगता है आप शायद इंडेक्सेशन यूज़ करना चाहते होंगे, देखना चाहते होंगे, पर आपको ये पता होगा कि इंडेक्सेशन यूज़ करते हैं तो 20% पड़ता है, और अगर आप बिना इंडेक्सेशन के करें तो 12.5% पड़ता है। तो मैं संजीव आपको ये भी सलाह दूंगा कि दोनों ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करके देखें, विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, पर आप डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट से आप इसको काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, मुझे ना जाने ट्राइब्यूनल में किसी में रजिस्ट्री बोला है, किसी में पोजेशन बोला है, किसी में अलॉटमेंट बोला है, पर ज़्यादातर कंसेंसस यही निकला कि इसको हम डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेते हैं जी।
3: Inha Prasad joins us from Bengaluru. A warm welcome, Mr. Prasad.
4: Hi, good evening, Market Mantra. This is Inha Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Priya ji.
1: Hello, sir.
4: Sharad ji, two questions.
0: Yes.
4: The first question is a lot of IPOs coming, from the leading companies.
0: Yeah.
4: One IPO is getting close on the 21st. I don't want to name the company.
0: Yeah.
4: At least in this volatile market, is it worth investing in this kind of a scenario? Is it worth in these leading companies? My second question is, this is a continuation of the question which I've asked about 2-3 weeks back.
0: Yeah.
4: So for the profit booking, now I am holding 30% of the defense sector, 20 each in banking, IT and FMCG.
0: Okay.
4: The balance 10 are in automobile and other few in the thing.
0: Okay.
4: In this, everything is in the profit, in the very good margin, except for the IT sector.
0: Okay.
4: So, which companies to be sold and how much to be sold in terms of percentage? Thank you. These are my two questions.
0: Okay. Although, Mr. Prasad, you have not named the companies, but the questions are quite, specific. But nevertheless, I'll try and answer. See, IPOs, I was reading a report on the recent IPOs which came, and it so came out that almost 4 or 5 of the IPOs are sort of listing at premium.

0: not all of them, you know. So therefore, I feel that you know, you have to be very selective. So I can't generally, Mr. Prasad, say that what should, because some of the IPOs are quite attractive also, whereas some of them may not be good enough. Some of them are not getting listed at their price band. They are getting listed below the issue price. So you have to, you know, I think in an IPO there needs to be a tick box, a checklist, you know, who's the promoter, what are the prospects, and so on. So, and then of course the market sentiment at that time also governs the listing price. So you know, a general view about IPOs, Mr. Prasad, cannot be given, because I'll have to go into specific, which we don't name, as you rightly pointed out. Second is, you spoke about defense sector and your IT sector. So therefore I would not recommend, Mr. Prasad, booking a loss in IT sector. However, I would recommend booking some profit in the other sectors, like you mentioned about defense, you mentioned about FMCG, banking. So I may not hesitate to say that you know, you can probably book profits. And I feel the situation in the market is such that if you take the profits home, you are a happy, you should be a happy man, you should be a lucky man, because a lot of people around the world at this time, at this point of time, are facing this problem. They are not able to book profit. So therefore I would recommend, how much profit to book? See, there are certain questions with Rajesh, and Prachi would agree, that it depends upon your overall portfolio, your requirements, your cash flow requirements, how long, what is your risk-taking appetite, what's your age, what's your remaining portfolio like. So you know, Mr. Prasad, I hope you understand that these are the things which we need to know to be able to decide that how much to exit, how much to keep, because it depends. If you don't need the money, maybe I'll say keep it for a very, very long time. But then the problem is, if I say for 10 years, then you might say, I mean, why 10 years? That's a very long period. Therefore, I will recommend in profits, wherever you are in profits, you book the profits. And wherever you are in loss, I think it is worth waiting, because as it is, you are in loss. Maybe you'll add a little more to the loss, but if you book the loss now, your loss is confirmed. So if the market rises, market is going to rise. It is right now under a depression, but then it will rise definitely in the times to come, hopefully.
1: बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं. टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए. टिंकू जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आप अपना सवाल पूछिए.
0: पूछिए टिंकू जी.
2: हेलो.
0: हाँ जी, पूछिए, आवाज आ रही है आपकी.
2: सर, मैं ये पूछना चाहते हैं, मैं किसी कंपनी में ऐसी, मैं काम करते हैं लेबर में, और मेरा सैलरी जो भी आता है मेरे कैश में मिल जाता है, ना कोई चेक है ना कुछ है, और किसी कंपनी को मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, भविष्य में ऐसा कोई दिक्कत आवे फैमिली में, इसीलिए. तो मैं आम आदमी,
0: मुझे लगता है इनसे संपर्क टूट गया, पर इन्होंने अपनी बात ऑलमोस्ट कह दी. कैश में इनको सैलरी मिलती है, और शायद किसी किसी में डेली कॉन्ट्रैक्ट टाइप शायद काम करते हैं, या सैलरी मिलती है. हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छा विचार है टिंकू जी का, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का. मुझे लगता है इसके लिए आपको, देखिए, अगर तो आप कंप्यूटर सेवी हैं तो आप ऑनलाइन जाके हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा जा सकता है, पर अगर आपको उसमें थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी अपने इलाके में जो आपके कोई एजेंट है, उनसे आप संपर्क करें, और संपर्क करके वो आपकी मदद करते.
1: दिल्ली से हमारे साथ सतीश जुड़ रहे हैं. सतीश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: गुड इवनिंग सर, कोहली साहब.
0: गुड इवनिंग
3: सर. मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, और दूसरा क्वेश्चन है कि सर ये इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में कुछ कर नहीं रहे, डेढ़ डेढ़ साल तक शेयर अटके रहते हैं
0: जी,
3: और ये लास्ट डेट क्या है सर पेपर शेयर फॉर्म की कन्वर्ट कराने की डीमैट में? थैंक यू सर.
0: लैब ग्रोन डायमंड्स, सतीश जी, अच्छा फ्यूचर है. मुझे निजी तौर पे एक दो इनाग्रेशन थी लैब ग्रोन डायमंड्स के शोरूम्स की, वहाँ जाने का मौका मिला, और मैंने देखा वाकई में वो देखने में ओरिजिनल डायमंड की तरह दिखाई देते हैं. बहुत अच्छा भविष्य है. जिन लोगों को डायमंड का शौक है और वो ओरिजिनल डायमंड नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ देख सकते हैं.
4: प्राइस वाइज दे आर नॉट वेरी चीप.
0: नहीं, फर्क तो है. उतने महंगे तो नहीं है, इतने महंगे कैरेटेज पर डिपेंड करता है. और दूसरा दूसरा इनका एक और सवाल था सतीश जी का कि हाँ, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का इनका काफ़ी समय से सवाल रहता है. तो मुझे लगता है इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में आपकी शिकायत बहुत दिन से बनी हुई है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक दो बार वहाँ होकर आएँ. हम जहाँ इस समय बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं इसके बिल्कुल अक्रॉस द रोड है, उनसे संपर्क करें. नॉर्मली इतनी देर लगती नहीं है क्योंकि काफ़ी वहाँ पर प्रणाली सुदृढ़ है इस समय पर.

0: मुझे नहीं पता किस कारण से आपका मामला वहां अटका हुआ है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उनसे तुरंत संपर्क करें। और एक ई निवारण ऐप है, सीपी ग्राम्स करके ऐप है, उन पे भी आप डालें, वहां पर शिकायत किसी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ हो तो आप डाल सकते हैं। तो कोशिश करें सतीश जी, हम तो यही कह सकते हैं कोशिश करें, अब यह तो स्पेसिफिक मामला हमें पता हो तो हम उसकी गहराई में तह में जाके आपको सलाह दें, तो आप ट्राई करिए, उम्मीद करते हैं कि काम बनेगा।
1: अन्य खबरों में श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव आयुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास ये भी सुनिश्चित करना है कि देश के युवाओं की शिक्षा और कौशल बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: मुंबई से हमारे साथ SJ पवार जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो
1: जी,
3: मैं सीनियर सिटीजन हूँ
0: जी।
3: हाँ, मेरा इंटरेस्ट इनकम 2 लाख है
0: जी,
3: और शेयर बेस्ड में 3 लाख कमा रहा हूँ
0: जी,
3: प्रॉफिट हुआ
0: जी।
3: तो मुझे टैक्स शेयर पे गिरने है या नहीं, क्योंकि 12 लाख का तो अभी ये हुआ ना लिमिट मैक्सिमम
0: जी,
3: तो उस बारे में जानकारी चाहिए।
0: देखिए पवार साहब, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, उस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में जो शेयर्स का गेन होता है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आपका मैं अगर कैलकुलेट करके देखूं तो 4 लाख से ऊपर जा रहा है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो न्यू रेजीम में है। तो क्योंकि वो पवार साहब चार लाख से ऊपर जा रहा है, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 4 लाख से ऊपर में, और राजेश और प्राची को भी बताऊं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है, बेसिक एग्जेम्पशन में कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो कवर हो जाता है, पर क्योंकि कैपिटल गेन पर एक स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है। तो इसलिए अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन से ऊपर जा रहे हैं तो भले ही आप 12 लाख से कम हैं तो आपको फिर उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं पवार साहब आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगता है वो स्लैब के हिसाब से नहीं लगता है, वो अलग रेट पर लगता है। तो इसलिए आपको मेरे विचार से पवार साहब आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए जी।
1: अन्य खबरों में, नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इस प्रारूप के अंतर्गत 2,000 रुपये तक के UPI लेन देन पर कोई MDR नहीं लगेगा। इस प्रारूप का व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन के लिए UPI पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, चाहे कितनी भी रकम ट्रांसफर की जाए। 75,000 रुपये और उससे ज्यादा के लेन देन के लिए MDR की सीमा प्रति ट्रांजेक्शन 300 रुपये होगी। 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लागू किया जाएगा। महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि MDR क्या है, आप इसे विस्तार से हमारे श्रोताओं के लिए आप समझाइए।
0: मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसको बोलते हैं, और ये वेंडर के ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है। पहले भी था, क्रेडिट कार्ड जो लोग यूज़ करते हैं उसमें 1.5%, 2%, 2.5%, कुछ बैंक तो 2.5% तक लेते हैं। तो उसमें वेंडर को एक चार्ज देना पड़ता है, जो कि उसको वो सुविधा ये ग्राहक को देता है, और ग्राहक बहुत सारे नए ग्राहक उसको मिलते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो लेके व्यक्ति आता था
1: जी,
0: तो उसके पास कैश नहीं होता था, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट के जरिए बैंक एक चार्ज लगाते हैं। कुछ इसी प्रकार का UPI पे अब ये नया आया है, क्योंकि 10 साल से UPI चल रहा था, और उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसमें नई नई फीचर्स लाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको मॉडर्न बनाने के लिए एक बोझ पड़ रहा था। पूरा की पूरी जो प्रणाली थी वो प्रणाली स्वचालित होनी चाहिए, उसमें 18,700 करोड़ रुपए बीच में प्रणाली खर्च कर रही थी, 2,000 करोड़ के आसपास जो है वो सरकार के भी खर्च हो रहे थे, और मुझे लगता है 10 साल हो चले थे, तो क्योंकि 10 साल हो चले हैं तो इसलिए उस पर अब ये MDR लगाया गया। और उम्मीद कर रहे हैं कि वेंडर्स इसको देंगे, प्रावधान तो यही है प्राची कि इसको वेंडर्स देंगे अपने पास से, उनका देना बनता है, और नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है।

0: திரைகணம் கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கிரண் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है. श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है.
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं. ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं. इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे

0: एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे ने उधना उकाई सोनखंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करैकला और तेलंगाना में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ बादल बरसने और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is world's third largest startup ecosystem.
0: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இரவின் மடியில். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें।

0: रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनखड़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इसका मकसद अवैध और तय समय से ज्यादा समय तक रुके विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके अप्रवासन की स्थिति की जांच करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर उचित कार्रवाई करना था। इस सिलसिले में 150 पुलिसकर्मियों की कुल 25 टीमें बनाई गई और उन्हें कुल 43 जगहों पर तैनात किया गया। अभियान के दौरान 40 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया और उनकी जांच की गई। इसमें 31 नाइजीरियाई, 4 युगांडा के, 3 तंजानिया के और 2 आइवरी कोस्ट के नागरिक थे। अभियान के तहत 10 विदेशी नागरिकों के खिलाफ देश से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की गई है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Semicon India 2026, the fifth edition of India's flagship semiconductor conference, concluded successfully at Yashobhoomi in New Delhi. 3-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem, featured over 600 exhibitors. These included around 300 international participants, representatives from 52 countries and over 150 speakers. 3-day witnessed 56 MOUs, announcements and strategic initiatives spanning semiconductor design, fabrication, advanced packaging, equipment and materials, power electronics and artificial intelligence. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi, Mr. Vaishnaw said, India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks

0: கீட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது நினைவில் நின்றவை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கிரண் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है. श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है.
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं. ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं. इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है.
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे. कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे. उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें. नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है. कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया. आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की. भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है. इसमें दवाएं फॉरेस्ट

0: इमरजेंसी का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मतदाता सूची में नोटिस दिए जाने की खबरों पर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद उनका नाम अद्यतन व मान्य कर लिया गया है। इसे 4 नवंबर को आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाली शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। आयोग ने पारदर्शी भागीदारी वाली और समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान में शुरू हुए 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज इलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। पुरुष हॉकी टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में सुबह 11:30 बजे इंडोनेशिया से भिड़ेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government is consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is world's third largest startup ecosystem.
2: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs, including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up to the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi, Mr. Vaishnav said that India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips.
3: There are many challenges. It's a very difficult industry. Such a difficult industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
1: Indian Railways has approached coverage 4.0 on 607.7 route kilometers of the Lucknow division at a cost of over 250 crore. The project will expand coverage 4.0 coverage.

0: நேர்கள் இதுவரை கேட்ட இந்த நிகழ்ச்சி நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கிரண் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है. श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है.
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं. ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं. इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं.
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे. कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे. उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें. रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है. रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी. इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है. इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है. कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया. आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की. भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है. इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं. विदेश मंत्री डॉक्टर

0: सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कल नई दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में कॉर्फबॉल प्रीमियर लीग 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि भारत में कॉर्फबॉल के प्रति बढ़ता उत्साह देखना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल युवाओं के लिए नए रास्ते खोलते हैं, सेहत और मिलकर काम करने की भावना को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is the world's third largest startup ecosystem.
2: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: सेमिकॉन इंडिया 2026, द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड सक्सेसफुली एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली। The three-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem featured over 600 exhibitors. These included around 300 international participants, representatives from 52 countries and over 150 speakers. The three-day witnessed 56 MOUs, announcements and strategic initiatives spanning semiconductor design, fabrication, advanced packaging and equipment and materials, power electronics and artificial intelligence. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw cautioned that semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi yesterday, Mr. Vaishnaw said India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips.
3: There are many challenges. It's a very difficult industry. Such a difficult industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
1: Indian Railways has approved coverage 4.0 on 607.7 route kilometers of the Lucknow division at a cost of over 250 crore. The project will expand coverage 4.0 coverage and strengthen train safety. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road over bridge on Udna-Ukai-Sungad section of Western Railway, while electronic interlocking will be installed at seven stations in the Solapur division at a cost of over 200 crore rupees. The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will hold a nationwide youth mobilization drive today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said the Rashtriya Sankalp Samaroh will be organized at 1,067 locations, including 471 district My Bharat offices and 596 partner organization venues

0: நேர்கள் இதுவரை கேட்டது இனிய ராகம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கிரண் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। चुनाव आयोग आज राष्ट्रीय राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाएगा। दिन भर के इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों की मदद करना है ताकि वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकें, प्रस्तावित नामों को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति प्रकट कर सकें और अपने विवरण में सुधार करवा सकें। आवेदन लेने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। लोग नया नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6, प्रविष्टि पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और मतदाता सूची के विवरण में सुधार या अपडेट के लिए फॉर्म 8 जमा कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित और राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग आज राष्ट्रीय राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाएगा। दिन भर के इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों की मदद करना है ताकि वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सके, प्रस्तावित नामों को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति प्रकट कर सकें और अपने निविवरण में सुधार करवा सकें। आवेदन लेने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने पर की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। रेल मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों का में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इससे रेल परिचालन के लिए उपलब्ध सुरक्षा अवसंरचना और मजबूत होगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। विभाग ने मछुआरों को आज से अगले सोमवार तक अंडमान सागर और अगले तीन दिनों तक पूर्वी मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि यमन के हौसी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से उसकी राजधानी रियाद पर हमला करने की कोशिश की। हौसी विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने सुबह हुई इस कोशिश के काफी देर बाद बयान जारी किया। जापान में शुरू हुए 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेक बॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला।